धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव पार्वती पते हर हर महादेव गंगा मैया की भवनाथ की अन्नपूर्णा की उदीयमान सूर्य की समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की हर हर महादेव।

आपके सामने हमारे भारत का संविधान गंगा का एक रत्न है। गंगा भावी व्यक्ति है।